नमस्कार, 4EBK के ग्लोबल प्रसारण के साप्ताहिक भारतीय कार्यक्रम नमस्ते वर्ल्ड में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार। पिछले महीने मैंने आपको जतिन ललित संगीतकार जोड़ी की बातें बताई थी और उनके गीत हमने सुने थे। चलिए आज मैं आपको ले चलती हूं एक प्यारी चुलबुली गालों पर खूबसूरत डिम्पल्स वाली अभिनेत्री प्रीति जिंटा के जीवन में ले चलती हूं और उन्हीं के फेमस गीत आपको सुनाती हूं। चलिए शुरुआत करते हैं मिशन कश्मीर के भूमरो वाले सुपरहिट गीत से। इसमें खूबसूरत प्रीति जिंटा के साथ हैं हैंडसम ऋतिक रोशन।

प्रीति जिंटा हिंदी फिल्मों की एक बेहद सफल अभिनेत्री हैं। उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स और क्रिमिनल साइकोलॉजी में डिग्रीज हासिल की हैं। ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने दिल से और सोल्जर फिल्मों से बॉलीवुड में कदम रखा और आते ही फिल्मफेयर बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी जीत लिया। 2003 में कल हो ना हो फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवार्ड पाया। 2003 में कोई मिल गया और 2004 में वीर जारा जैसे बैक टू बैक सुपरहिट्स दिए हैं प्रीति ने। 2005 में सलाम नमस्ते और 2006 में कभी अलविदा ना कहना में इंडिपेंडेंट इंडियन वुमन का किरदार निभाया। ये फिल्में एनआरआई मार्केट में सुपर डुपर हिट रही। 2008 में एक कैनेडियन फिल्म हेवन ऑन अर्थ में अभिनय के लिए प्रीति को सिल्वर ह्यूगो अवार्ड मिला। चलिए अब सुनते हैं फिल्म दिल से का यह सुपरहिट सॉन्ग।

जिन श्रोताओं ने देर से ट्यून इन किया है उनका स्वागत है 4EB के ग्लोबल प्रसारण के साप्ताहिक भारतीय प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड में और मैं हूं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार। हम बातें कर रहे थे प्रीति जिंटा की और उनके फेमस गीत सुन रहे थे। शिमला के एक राजपूत परिवार में प्रीति का जन्म हुआ था। उनके पिता भारतीय सेना में अफसर थे। प्रीति जब 13 साल की थी तब उनके पिताजी एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। प्रीति के बड़े भाई हैं और एक छोटे भाई हैं। बड़े भाई अभी भारतीय सेना के कमीशन्ड ऑफिसर हैं और छोटे भाई कैलिफोर्निया में हैं। टॉमबॉय जैसी होने पर भी अपने पिताजी द्वारा दी गई डिसिप्लिन वाली जिंदगी और फैमिली वैल्यूज प्रीति ने हमेशा चेरिश किए हैं। चलिए अब सुनते हैं फिल्म कल हो ना हो का यह गीत।

पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद प्रीति जिंटा ने मॉडलिंग की और रुख किया। एक दोस्त के बर्थडे पर एक एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टर से प्रीति की मुलाकात हुई, जिन्होंने प्रीति को पर्क्स चॉकलेट के एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑडिशन करने को कहा और प्रीति सेलेक्ट हो गई। फिर प्रीति कई एडवर्टाइजमेंट कैटलॉग्स और कमर्शियल्स में नजर आई। लिटिल सोप का एड तो शायद आपने भी देखा होगा। एक बार प्रीति की मुलाकात डायरेक्टर शेखर कपूर से हुई जब वे अपनी एक सहेली को ऑडिशन के लिए लेकर गई थी। तब शेखर कपूर ने प्रीति को भी ऑडिशन करने को कहा और उन्हें प्रीति पसंद आ गई, परंतु दुर्भाग्यवश वह फिल्म बंद हो गई। शेखर कपूर ने प्रीति की सिफारिश मणि रत्नम से की, जो दिल से फिल्म बना रहे थे। चलिए सुनते हैं यह गीत फिल्म लक्ष्य से।

2004 में यश चोपड़ा की क्रॉस बॉर्डर रोमांस वीर जारा के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश कर रहे थे जिसकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म किया जा सके। उस समय प्रीति जिंटा ज्यादातर वेस्टर्नाइज किरदारों में दिखती थी, परंतु यश चोपड़ा ने प्रीति जिंटा में उस चेहरे को देखा जिसकी वे तलाश कर रहे थे। और फिर जारा हयात खान की भूमिका में हमने प्रीति जिंटा को देखा, एक पाकिस्तानी औरत जिसको भारतीय सैनिक वीर प्रताप सिंह से इश्क हो जाता है और मिलन के लिए 3 दशकों का समय लग जाता है। प्रीति के साथ शाहरुख खान थे इस फिल्म में। चलिए इसी फिल्म का एक प्यारा सा गीत सुनते हैं।

आप सुन रहे हैं 4EB के ग्लोबल प्रसारण में साप्ताहिक भारतीय कार्यक्रम नमस्ते वर्ल्ड और मैं हूं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार। प्रीति जिंटा ने फिल्मों में काम करने के साथ साथ कई ह्यूमैनिटेरियन काम भी किए हैं। 2005 में अन्य सेलिब्रिटीज के साथ प्रीति ने हेल्प टेलीथॉन कॉन्सर्ट में 2004 के इंडियन ओशन भूकंप से पीड़ित लोगों के लिए फंड इकट्ठा किया। फिर ब्लड डोनेशन कैंपेन्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और औरतों के हकों के लिए भी कई कैंपेन्स में भाग लिया प्रीति ने। अपने 34th बर्थडे पर प्रीति ने एक अनाथालय से 34 गर्ल्स को स्पॉन्सरशिप दी। विधवाओं और बच्चों के संरक्षण का काम करने वाली संस्था द लूम्बा ट्रस्ट की ब्रांड एम्बेसडर है प्रीति। HIV और एड्स की अवेयरनेस करने के लिए प्रीति भारत की गुडविल एम्बेसडर भी हैं। चलिए अब कल हो ना हो फिल्म का यह प्यारा सा गीत सुनते हैं।

क्रिकेट के शौकीन हमारे श्रोतागण जानते ही होंगे कि प्रीति जिंटा की क्रिकेट में कितनी रुचि है। आईपीएल में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम की मालकिन है प्रीति। 2009 तक वे ही एकमात्र महिला थी जिन्होंने आईपीएल की एक टीम को खरीदा था और सबसे कम उम्र की आईपीएल टीम मालकिन भी बनी। फिर 2017 में प्रीति स्टेलनबोश किंग्स फ्रेंचाइज टीम ऑफ साउथ अफ्रीकाज जांसी सुपर लीग की मालकिन भी बनी। प्रीति सोशल एक्टिविस्ट है, टेलीविजन प्रेजेंटर है, स्टेज परफॉर्मर भी हैं। 2004 और 2005 में प्रीति ने बीबीसी न्यूज ऑनलाइन साउथ एशिया में लिखा है। PZNZ नामक एक प्रोडक्शन कंपनी की फाउंडर भी हैं। चलिए अब सुनते हैं फिल्म कभी अलविदा ना कहना का यह गीत।

प्रीति के बारे में दो चार बातें ऐसी भी हैं जिन्हें सुनकर आपको भी उन पर नाज होगा। एक एंटी माफिया केस में आखिर तक अपने बयान पर अड़िग रहकर माफिया के खिलाफ बयान देने वाली धैर्यशाली एक्ट्रेस हैं प्रीति। वे कहती हैं कि धैर्य दिखाने वाले लोग डरते नहीं हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि डर को खत्म करना ही धैर्य का काम है। मैं भी इंसान हूं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी से नहीं डरती, परंतु उस डर को दूर करके ही मैंने धैर्य पाया है। इसी धैर्य के लिए प्रीति जिंटा को गॉडफ्रीज माइंड ऑफ स्टील का अवार्ड मिला है। हम सब की तरह प्रीति को भी खाना बहुत पसंद है, फूड और फिटनेस का वह भरपूर ख्याल रखती हैं। चलिए अब सुनते हैं यह गीत फिल्म सलाम नमस्ते से।

कहा जाता है कि प्रीति जिंटा दो बार मौत के करीब से बचकर आई हैं। एक बार कोलंबो में टेम्पटेशन कॉन्सर्ट के दौरान हुए एक्सप्लोजन से बची और दूसरी बार इंडियन ओशन के सुनामी से बची। ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय प्रीति जिंटा के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। द सिम्पसन्स सीरीज की फैन है प्रीति। आशा है आज का यह प्रीति जिंटा स्पेशल प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जाते जाते आखिर में हम सुनेंगे फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा, इसका एक प्यारा सा गीत। इसी गीत के साथ आज का यह प्रसारण खत्म करने का समय हो चला है। अगले महीने मैं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार आपसे फिर मिलने आ जाऊंगी। सीमा नाउ साइनिंग ऑफ। नमस्कार।